0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है।

रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड के 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखें, जिससे आप जुड़े रहें अपने मनपसंद शो घर आंगन के साथ। आप हमें मेल भेज सकते हैं और हमारा मेल एड्रेस है smgoldca@gmail.com। हमें आपके विचारों का, सुझावों का इंतजार हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा भी। तो खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मीठा सा गीत आपकी पसंद आपकी नजर।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
1: जी हाँ, यादें। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर की शुरुआत की खूबसूरत ढेर सारी प्यारी यादें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी की, यानी कि 3 अक्टूबर 1957 को आकाशवाणी ने बॉम्बे यानी मुंबई से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सेवा की शुरुआत की। भारतीय श्रोताओं को मनोरंजन और सुगम संगीत का एक स्वदेशी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। उद्घाटन

के दिन विविध भारती पर प्रसारित होने वाला पहला गीत मन्ना डे द्वारा गाया गया नाच रे मयूरा था। फिल्म संगीत के साथ साथ हवा महल, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, जयमाला और छाया गीत जैसे अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होते थे। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त जैसी सिनेमा जगत की महान हस्तियों ने भी अपनी आवाज और उपस्थिति से इस सेवा की गरिमा को बढ़ाया। विविध भारती ने हिंदी फिल्म संगीत के माध्यम से पूरे देश को भाषाई और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया था। लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म है महबूबा।

अब बात करते हैं कुछ संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की, जिसे आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 21 मई को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया की ताकत हमारी विविधता में है। हमारे देश भारत ने तो सांस्कृतिक विविधता की मिसाल खुद मिलती है। अलग अलग भाषा, खान पान, त्यौहार, पहनावे सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। सांस्कृतिक विविधता सिर्फ उत्सव नहीं, ये विकास का इंजन है। जब अलग अलग संस्कृतियाँ एक दूसरे से सीखती हैं, तो नई नई विचारधारा जन्म लेती है, नए आविष्कार होते हैं और समाज आगे बढ़ता है। इस दिन हमें वादा करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान करना ही सच्चा विकास है। तो आज से शुरू करते हैं, किसी एक नए दोस्त से बात करें, किसी अलग भाषा का गाना सुने या किसी दूसरे त्योहार में शामिल हों, विविधता को अपनाएं और विकास को आगे हमेशा आगे बढ़ाते ही जाएं।

बात करते हैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि की। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उन युवा प्रधानमंत्री को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आधुनिक बनाने का सपना देखा था। मात्र 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी, जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए और शिक्षा विज्ञान को नई दिशा भी दी। वे कहते थे, भारत एक पुराना देश है लेकिन युवा राष्ट्र है और मैं भी युवा हूँ। मेरा सपना एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का है। और इन दूरदर्शी नेता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी याद हमें प्रेरित करती रहे कि हम मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। और साथ ही आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है क्योंकि ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ही आता है। इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत की अहिंसा की परंपरा को मजबूत रखेंगे और मानवता के लिए काम करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित शांतिपूर्ण भारत बनाने का वादा करें।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में गीत, फिल्म थी आनंद। अब बात करते हैं कुछ विश्व चाय दिवस की। आज हम बात करें एक ऐसे पेय की जिसके बिना सुबह की शुरुआत अधूरी लगती है, और वो है हमारी प्यारी चाय। चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पानी के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ये पेय है चाय। सुबह उठते ही चाय, काम के बीच में चाय, दोस्तों के साथ चाय, ठंड में चाय, बारिश में चाय, हर मौके का साथी है चाय। ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लाखों किसानों की रोजी रोटी भी है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज का दिन उन चाय उत्पादकों के नाम है जिनकी मेहनत से ये प्याला हमारे हाथ में आता है। चाय हमें एनर्जी देती है, स्वास्थ्य लाभ देती है और सबसे बढ़िया दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने का भी बहाना देती है। तो चाय हमें एक दूसरे से जोड़ती भी है। कितने ही रिश्ते चाय की दो प्यालों के साथ शुरू हुए हैं। ऑफिस में, ट्रेन में, घर में, हर जगह चाय से बातचीत शुरू होती है। और आज चाय दिवस पर अपनी फेवरेट चाय बनाकर पीजिए, पिलाइए किसी को और खुश हो जाइए। क्योंकि जैसा कहा जाता है ना, हमेशा हर कोई बोलता है चाय पी लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वतंत्र जनसे की जिसे गाए हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब बात करते हैं कुछ स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं के लिए। नए रूप में प्रस्तुत ये योजना महिलाओं को बेहतर वित्त पोषण, मजबूत समर्थन, सपनों को सफल व्यवसायों में बदलने के बड़े अवसर प्रदान करने को तैयार है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है। स्टैंड अप इंडिया

महिला उद्यमियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक बैंक लोन प्रदान करती है और योजना प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला को ऋण देने का लक्ष्य रखती है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और खास तौर पर इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह महिला उद्यमी होनी चाहिए। व्यक्तिगत उद्यमों के लिए कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रक हिस्सेधारी एक महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। ब्याज दर बैंक के सबसे कम दर के बराबर होती है, जो आमतौर पर 3% से अधिक नहीं होती, और ये ऋण 7 वर्ष तक की अवधि में चुकाया जा सकता है, जिससे 18 महीने की अधिकतम मोहलत अवधि शामिल हो सकती है। और इसके लिए खास तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसाय का पता होना चाहिए, व्यवसाय योजना का नाम होना चाहिए और ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनके काम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

और अब बात करते हैं पर्यावरण के अनुकूल ही खुद को चलाएं, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होने और धरती की रक्षा करने से न सिर्फ ये ग्रह रहने के लिए बेहतर स्थान बनता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। जैसे गर्मियों में घर को ठंडा और ताजा रखने के लिए आसपास आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने घर में, और हरियाली से भरा रहेगा आपका ये घर और ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। पूरे हफ्ते कम से कम प्लांट बेस्ड पदार्थों को चुनें जिसमें बहुत सारी सब्जियां, फल, फलियां और अनाज शामिल हों, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। आप अपनी बैटरी, कागज, कंटेनर, कपड़े और कठोर प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकलिंग कर सकते हैं इससे पहले कि आप कुछ भी फेंक दें, उसे रिसाइकिल कर लें। आजकल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है यानी प्लास्टिक, और सिंगल जो प्लास्टिक है वो बैन करने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर हर कोई खुद से ऐसे कदम बढ़ाए जिससे प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, ताकि स्वच्छ और खुली हवा में सांस ली जा सके। लता मंगेशकर, सुरेश खड़े की आवाज में गीत फिल्म है

आप बात करते हैं घर से निकलते हुए यानी गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से पहले सावधानियां बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मी के चलते अस्पतालों में ओपीडी में डिहाइड्रेशन उल्टी सिरदर्द मरीजों की तादाद बढ़ गई है और डॉक्टर ने सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों बच्चों बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं शुगर बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सर्द गर्म शिकार हो रहे डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खासतौर पर रात को तापमान बढ़ने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है जिससे सुबह थकान और कमजोरी की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा तेज धूप में एसी वाले कमरों में आने जाने के कारण भी लोगों की सेहत बिगड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अक्सर एसी को 16-18 डिग्री पर चलाते हैं लोग जिससे शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ जाता है। तो एसी का तापमान हमेशा 24 से 27 डिग्री के बीच रखना जरूरी है। ठंडे कमरे से अचानक गर्मी में निकलने से सांस के पुराने मरीजों की समस्या बढ़ रही है। दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और बच्चे इस दौरान बाहर न खेलें, नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, ORS और नींबू पानी नारियल पानी का सेवन ज्यादा करें और बाहर पानी जो रेड़ी पर मिलता है उससे पानी पीने से बचें। यदि अगर बहुत जरूरी बाहर जाना है तो खासतौर पर छाते और पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, साथ ही अपने डॉक्टर की सलाह से दवा की डोज भी जरूर रख लें।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपसे होगी अगली मुलाकात अगली प्रस्तुति तक के लिए। आप मुझे दीजिए इजाजत यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अथवा आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत, खैर मकदम करती हूं मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। कार्यक्रम एक ही फिल्म में, एक ही फिल्म कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज एक ऐसी चुनिंदा फिल्म जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिल के करीब होती है। तो आज दोस्तों इसी कड़ी में आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक ऐसी ही फिल्म, या कहूं कि बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों की अगर हम बात करेंगे तो इस फिल्म का नाम जरूर हमारे जहन में आता है, जिसने उस दौर में समाज की रूढ़ियों को न सिर्फ तोड़ा बल्कि देखने वालों के दिलों को भी झकझोर के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए सन 1975 में आई एक ऐसी क्लासिकल फिल्म जो कि न सिर्फ कहानी के मद्देनजर हमारे दिल के करीब है बल्कि अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें तो बस हम लोगों के दिल में आज भी कहीं ना कहीं बसा हुआ है इस फिल्म का संगीत। जी दोस्तों, बात कर रही हूं मैं फिल्म जूली की।

दोस्तों, जूली फिल्म जो कि सन 1975 में आई और सबके दिलों में एकदम से छा गई। जूली सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी बल्कि एक ऐसा आईना थी जिसने उस जमाने में, जी हाँ 1975 काफी पहले की बात है, उस टाइम पर जब इंटरकास्ट मैरिज को या फिर शादी से पहले प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हुआ करते थे, उन चीजों को बेहद ही संजीदगी के साथ इस फिल्म में दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। दिखाया गया कि किस तरह से एक एंग्लो इंडियन लड़की जूली और एक हिंदू लड़के की ये मोहब्बत समाज की दीवारों से टकराती है। और इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था एक नई लड़की ने, जिसने अपनी मासूमियत और अपनी दमदार एक्टिंग से रातों रात सबको बना लिया अपना दीवाना।

आप जुड़े हैं कार्यक्रम में की फिल्म के साथ, और आपके साथ हूँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, और हम बात कर रहे हैं फिल्म जूली के बारे में। जूली फिल्म जिसमें मेन किरदार यानी कि जूली का किरदार निभाया अभिनेत्री लक्ष्मी ने, लेकिन अभिनेत्री लक्ष्मी का सिलेक्शन इस किरदार के लिए होना अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है, और इसके पीछे कोई ऑडिशन या कोई पुरानी सुपरहिट फिल्म का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जूली असली अपने सन 1974 में आई सुपरहिट मलयालम फिल्म चट्टकारी की एक रीमेक थी। जो मलयालम फिल्म थी उस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर था, जो एंग्लो इंडियन लड़की का कैरेक्टर था, वो लक्ष्मी ने निभाया था। और केरल में ये फिल्म इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही कि इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और लक्ष्मी जो कि जूली फिल्म में भी उन्होंने अपने एक्टिंग से, अपने अभिनय से दर्शकों को बहुत ही अच्छे से सभी के दिल में वो समा गई, उसी तरह से वहां पर भी वो पूरी तरह से छा गई थी, सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। और जब इस फिल्म के निर्माता बी नागरेड्डी और निर्देशक के एस सेतुमाधवन ने इस फिल्म को हिंदी में बनाने का सोचा, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई हिंदी दर्शकों के लिए एक ऐसी अभिनेत्री लेकर आए जो जूली के किरदार में बिल्कुल फिट रहे। अब क्योंकि सेतु माधवन जानते थे कि जो मेन फिल्म मलयालम में बनी थी उस फिल्म में किस तरह से शानदार अभिनय किया था और इस तरह का बोल्ड कैरेक्टर निभाया था लक्ष्मी ने, तो उनसे बेटर इस कैरेक्टर को और कोई नहीं निभा सकता। उस कैरेक्टर के साथ

अलावा और कोई जस्टिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्मी की एक्टिंग रेंज कितनी अच्छी है। और यही वजह थी कि लिया गया, चुना गया इस डब्ड, इस रीमेक फिल्म में भी लक्ष्मी को ही एज अ जूली के रूप में। रहिए आप हमारे साथ, सुनते रहिए कुछ सुने अनसुने किस्से फिल्म जूली से।

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और बात कर रहे हैं हम फिल्म जूली की। जूली फिल्म जिसमें लक्ष्मी जी ने निभाया कैरेक्टर जूली का, और ये उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, यानी कि कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म रही। और पहली फिल्म में उन्होंने वो कमाल करके दिखाया कि फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्होंने हासिल किया। वैसे आपको बता दें

अभिनेत्री थी जिसे शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था सुपरस्टार श्रीदेवी ने, और उन्होंने फिल्म जूली में जूली यानी कि लक्ष्मी की छोटी बहन इरन का किरदार निभाया था। और उस वक्त श्रीदेवी की उम्र

दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और वाकई में इस फिल्म की कहानी जितनी बेबाक थी, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की कामयाबी में दूसरा सबसे बड़ा हाथ था इस फिल्म के जादुई संगीत का। जी हाँ, जब भी हम इस फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो इस फिल्म के जो संगीतकार हैं उनका जिक्र जहन में आ जाता है, संगीतकार राजेश रोशन।

जिन्होंने इस फिल्म से अपनी एक अलग पहचान बनाई। जरा सोचिए उस दौर में जब कव्वाली, गजल और एक रेगुलर धुनों की बोलबाला था, वही सब चल रही थी। उस वक्त राजेश रोशन साहब ने वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का एक ऐसा फ्यूजन तैयार किया कि हर कोई झूम उठा। जी हाँ दोस्तों, और शायद यही वजह थी कि प्रीति सागर की आवाज में जो गीत था माई हार्ट इज बीटिंग, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो पहला पूरी तरह अंग्रेजी वाला गाना बना जो कि हर हिंदुस्तानी की जबान पर चढ़ गया। सोचिए हिंदुस्तान में बॉलीवुड फिल्म में एक पूरा गाना अंग्रेजी में, और ये कमाल किया राजेश रोशन साहब ने उनके संगीत ने। और जो गीत अभी आप सुन रहे थे किशोरदा की आवाज में, क्या गीत है। जब भी किसी को मोहब्बत होती है, पहली मोहब्बत होती है, तो उसका दिल यही गाना गुनगुनाने के लिए करता है। जी हाँ दोस्तों, इस तिगड़ी ने इतना खूबसूरत संगीत दिया इस फिल्म में, या कहूँ कि एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया कि जिसकी खुशबू आज भी हम सभी के जहन में बसी हुई है, और वही खुशबू बसी है हमारे दिल में हमारे श्रोताओं के संदेशों की। तो उनके संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश जी एक बार फिर से संदेश भेजते हैं। वीरधाम जंक्शन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजित भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भावेश कुमार और सनी भावसार जी के साथ में। सुनील पाठक, कमल गाव्या मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं नरकली बाजार जगराओ पंजाब से। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनार प्रसाद जाधव नेहरू चौक पैठण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला संदेश हम तक पहुंचाया है वटिंडा खेड़ा, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुरागव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरगांव सुर संगम रेडियो श्रोता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये हैं अजीत भवसार जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई है। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी तामुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ है मास्टर अल कबीर। पहाड़गंज मुल्तानी थाना से अनिल मोहन, उषा मोहन, टेलू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु सुथार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला संदेश डीबी राणा जी का नेहरू विहार दिल्ली से। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक अगला संदेश है सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन मुखी जी का शांतिनगर सोनीपत से। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, सोपान ताड़े, नारायण इंगले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है संदीप मकर जी ने। ज्योति, मन्नत, भारत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर पंजाब से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया अपार जी के साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। राजकोट से परवीन डिसूजा जूली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दोस्तों बहुत सारे संदेश हैं जो कि हम तक आए हुए हैं, और ये अगला जो संदेश है इसको भेजा है अनिल मोहन जी ने पीटीआई संसद मार्ग से। ज्योति जी का एक बार फिर से हम तक ये संदेश आया हुआ है, और दोस्तों सुधाकर जाधव जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल, प्रथमेश सर्वत, देशमुख कुमारी प्रणाली जी के साथ में ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल खेरा, फजिल का पंजाब से विशाल, विशु और लाडली खेरा के साथ में ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यादों का कारवा आज यही तमता है, और फिल्म जूली एक फिल्म नहीं बल्कि गुजरे जमाने का वो हसीन लम्हा है जिस

ये सफर बस यहीं तक का वक्त हुआ आप सभी से विदा लेने का, तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती खूबसूरत संगीत लता जी की आवाज में, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

गीत वजो वंदे मातरम गाना लाजमी होगा। मदरसा सिक्ख्या विभाग ने एक निर्देश जारी किया जिस विच कहा गया कि हुण तों घट गिणती मामलियां ते मदरसा सिक्ख्या विभागां अधीन संस्थावां विच विद्यार्थी नूं क्लासां शुरू होण तों पहलां वंदे मातरम गाना लाजमी होगा। अंत विच चोणवीआं खबरां इक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंज देशां दे सफल दौरे तों बाद देश परत आए ने। भारत अते इटली ने अपने संबंधां नूं इक विशेष रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण दा ऐलान कीता है। तमिलनाडु विच जोसफ विजय की अगुवाई वाली सरकार विच कई मंत्रियों नूं शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बंगलादेश सरहद ते पंजाली कार की वाड़ लाने लई सीमा सुरक्षा बल नूं जमीन सौंपनी शुरू कर दिती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच पाकिस्तान के नसलकुशी के इतिहास की निंदा की है। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन

सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली इक्तिसादी राबतों को वसत देने के लिए भारत मशरक वस्ता यूरोप माशी राहदारी को मजीद फरोग देने पर मुत्तफिक हो गए हैं। हुकूमत ने सारफीन पेशावर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनुआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। मरकज ने इबोला बीमारी से मुतासर मुल्कों से पहुंच रहे या ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी मदरसों में प्रेयर गीत के तौर पर वंदे मातरम को लाजमी करार देने का हुक्म जारी किया है। तमिलनाडु में वजीर आला सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली काबीना में चार खवातीन वजीरों के इजाफे के बाद वुजरा की तादाद 33 हो गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने तिजारत सरमायाकारी को मजबूत और मुस्तहकम करने और सप्लाई के सिलसिले को बेहतर बनाने की गरज से भारत मशरक वस्ता यूरोप इक्तिसादी कॉरिडोर IMEC को मजीद फरोग देने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने IMEC की अहमियत और जरूरत को तस्लीम करते हुए इसे फरोग देने और इसकी अज़सर-ए-नौ तश्कील देने से इत्तेफाक किया है ताकि आलमी तिजारत खुशहाली और राबतों को बढ़ाया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMEC को एक अहम राबते से ताबीर किया जो यूरोप मशरक वस्ता और भारत को जोड़ता है और इसके नतीजे में तिजारत सरमायाकारी और सप्लाई के सिलसिले को बढ़ावा मिलेगा और ये मुस्तहकम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली पहुंचे थे जहां से वो आज सुबह नई दिल्ली वापस आए हैं। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने खुराक और ज़राअत से मुतालिक तंजीम का एग्रीकोला मेडल वजीर आजम मोदी को दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। जनाब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि जनाब मोदी अनाज की यकीनी फरहमी को मुस्तहकम करने, ज़राअत की पायदार तरक्की को फरोग देने और गांवों की तरक्की के लिए जो नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं उसे तस्दीम करने के लिए उन्हें इस एजाज से नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी को कल इटली के शहर रोम में खुराक और ज़राअत से मुतालिक सदर दफ्तर में पुरवकार एग्रीकोला मेडल से सरफराज किया गया था। हुकूमत ने सारफीन पेशावर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। दवाओं के पैमानों से मुतालिक मरकजी इदारे CDSCO ने कहा कि कॉस्मेटिक्स इंसानी जिस्म पर सिर्फ घिसने, लगाने या छिड़कने के लिए होती हैं। CDSCO ने कहा कि कॉस्मेटिक की फरोख, डिस्ट्रीब्यूशन, दरामदात और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक जाब्तों 2020 की गुंजाइशों के तहत मुंजबित होती है। CDSCO ने मजीद कहा कि कॉस्मेटिक सिर्फ सफाई, खूबसूरत बनाने, जाजिबियत में इजाफा करने और इंसानी जिस्म की जाहिरी शक्ल को बदलने के लिए होते हैं। CDSCO ने मजीद कहा कि कॉस्मेटिक मसनूआत में ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह कुन दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक लेना कानून और जाब्तों की खिलाफ वर्जी है। सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल ने इबोला बीमारी से मुतासर मुल्कों से पहुंच रहे या ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक जमहूरिया कोंगो, युगांडा और जुनूबी सूडान समेत ज्यादा खतरा लाख ममालिक का सफर कर चुके ऐसे अफराद जिन्हें बुखार, सरदर्द, उजलात में तकलीफ, बिना किसी वजह के खून बहने और उल्टी आने जैसी अलामत जाहिर हो रही हैं वो फौरी तौर पर अपना इलाज कराएं। एडवाइजरी ने खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे मुसाफिर जो इबोला के तस्दीक शुदा या मुश्तबा मरीजों के खून या जिस्मानी मादों के सीधे राबते में आए हैं वो इमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले फौरी तौर पर एयरपोर्ट हेल्थ अफसर या हेल्थ डेस्क पर रिपोर्ट करें। मगरबी बंगाल हुकूमत ने तमाम मदरसों में प्रेयर की जगह वंदे मातरम गाना लाजमी करार दिया है। मदरसा तालीमी महकमे ने इस सिलसिले में एक हिदायतनामा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब अकलियती उमूर और मदरसा तालीमी महकमे के तहत आने वाले इदारों में जमातें शुरू होने से पहले तलबा को वंदे मातरम गाना लाजमी होगा जो पहले की रिवायत और रहनुमा उसूलों की जगह लेगा। आसाम की 16वीं कानून साज असेंबली का आज पहला इजलास शुरू हुआ। उपरी स्पीकर चंद्रमोहन पतोवारे ने ऐवान की सदारत की और नए मुंतखब मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत वाली हुकूमत ने आज अपनी वजारत की तौसी की और रियासत में अब इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई है। कांग्रेस के द्वारा कीन समेत काबीना में 23 नए वुजरा को शामिल किया गया है। हालिया तौसी के बाद वजीर आला सी जोसेफ विजय समेत काबीना में वुजरा की कुल तादाद 33 हो गई है। 6 दहाइयों के बाद रियासती काबीना में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है जो साल 1967 के बाद

0: पहली दफा तमिलनाडु की वजारत में अपनी नुमाइंदगी कर रही है। नई तौसीशुदा काबीना में 4 खवातीन वजीरों को भी शामिल किया गया है। नए अराकीन को आज सुबह लोक भवन में गवर्नर विश्वनाथ अरलेकर ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफबरदारी की तकरीब में हुकूमत को हिमायत देने वाली इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आला जोसेफ विजय की क्यादत वाली हुकूमत को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ अरकान की हिमायत हासिल है। आज सुबह नए शामिल किए गए कांग्रेस के वजरा रियासती कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं के साथ श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल गए और उनको खराज अकीदत पेश किया। आज लोक भवन में कैबिनेट की तौसी की तकरीब में हुकूमत को हिमायत देने वाले एआईएडीएमके का धड़ा मौजूद नहीं था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की मुख्तलिफ शाहराहों के रखरखाव और मेयार से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर जनाब गडकरी ने कनेक्टिविटी और मुसाफिर आमदरफ्त को मुस्तहकम करने के लिए पायदार और मौसर शाहराहों को यकीनी बनाने के मकसद से जदीद टेक्नोलॉजीज को अपनाने और बरवक्त तकमील पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने अफसरान को रोड सेफ्टी और पायदारी को बरकरार रखने के लिए एहतियाती इकदामात और जामे रद्दअमल निजाम के साथ मानसून की मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने कहा कि उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मौसूल फीडबैक की बुनियाद पर कार्रवाई की है और इन कौमी शाहराहों के मेयार और रखरखाव की पेशरफ्त का जायजा लिया है। खाम तेल की बढ़ती कीमतों और तवानाई की यकीनी फराहमी के खदशात के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इक्तसादी खुद किफालत हासिल करने की खातिर ईंधन की बचत से मुतालिक इकदामात की अपील के रद्दअमल के तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने वर्चुअल समातों और कामकाज के हाइब्रिड तरीकेकार अपनाने का ऐलान किया है। रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक ये इकदामात आज से नाफिज़ुल-अमल हो गए हैं और अगले अहकामात तक इनका इतलाक होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि वकीलों की वर्चुअल समातों और वर्चुअल पेशियों के लिए हौसला अफजाई की जाती है बशर्ते कि वो ऑनलाइन समातों के मुकर्रर तरीक़ेकार और प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने तपेदिक के खात्मे के कौमी प्रोग्राम के तहत स्क्रीनिंग और जल्द तशखीस के जरिए दुनिया से तपेदिक के खात्मे के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक शुरू किया है। जनाब नड्डा ने जिनेवा में आलमी सेहत असेंबली के 79वें इजलास के दौरान फेफड़ों की सेहत स्क्रीनिंग से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने वाजे किया कि मुल्क ने घर घर जाकर मोबाइल स्क्रीन टीमों, बिरादरियों में बेदारी और ज्यादा खतरा लाहक कमजोर आबादियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए सरगर्म केसेस का पता लगाया है। जनाब नड्डा ने मजीद इत्तला दी कि भारत ने तपेदिक और फेफड़ों की दीगर बीमारियों की जदीद तशखीस के तरीक़ेकार में खातिर खा बेहतरी लाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य मुकाबिल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है जबकि चेन्नई सुपर किंग्स चौथे मकाम के लिए अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश करेगी। इस बीच कल रात ईडन गार्डन्स में हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस पर 4 विकेट की जीत हासिल करते हुए अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की नौजवान खवातीन कराटे खिलाड़ियों ने बैनुल अक्वामी कराटे चैंपियनशिप में 9 तमगे जीतकर मरकज के जेर इंतजाम इलाके को फकरिया लम्हों की सौगात पेश की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली इक्तिसादी राब्तों को वसअत देने के लिए भारत मशरक वस्ता यूरोप माशी राहदारी को मजीद फरोग देने पर मुत्तफिक हो गए हैं। हुकूमत ने सारफीन, पेशेवर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। मरकज ने इबोला बीमारी से मुतासिरा मुल्कों से पहुंच रहे या वहां से ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी मदरसों में प्रेयर गीत के तौर पर वंदे मातरम को लाजमी करार देने का हुक्म जारी किया है। तमिलनाडु में वजीर आला सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली काबीना में 4 खवातीन वजीरों के इजाफे के बाद वुजरा की कुल तादाद 33 हो गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news.

0: भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून

0: ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
1: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
3: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
0: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेता

0: नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
3: चाय, ये चाय।
4: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3।

0: सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका आपके मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम एक ही कलाकार में। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी, आपकी मितवा, आपकी अपनी दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के उस शानदार फिल्मकार की कहानी जिन्होंने ना सिर्फ फिल्में बनाई बल्कि एक पूरा दौर गढ़ के रख दिया। एक ऐसा नाम जिसने रोमांस को नई उड़ान दी।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं।

0: ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता
1: जी।
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं
1: जी।
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है।

0: अकेला रहता है।
1: मुझे बड़ा डर लगता है, हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
2: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
2: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कौवे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो।

0: जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ को सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओगी कहानी जल्दी से?
0: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन।

0: भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी।

0: रीजन भाई एक ही रन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं भाई,

0: करूं भाई क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ?

0: अंकुश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरण भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरण जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा क्या मम्मी?

0: चाहती।
1: क्या तुम मेरे साथ ही बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे।

0: रीमा, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
1: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
2: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
1: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
2: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
1: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
2: बिल्कुल सही कहा अटकू।
3: इसे काटो।
4: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
2: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
0: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
5: अजय अजय रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
1: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
2: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
2: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
1: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
1: अच्छा ठीक है
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
6: दरअसल एनसीईआरटी एनसीईआरटी बस पे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग यानी निपिन मीडिया में भी दोनों एफएम के जो आकाशवाणी करगिल इन आकाशवाणी दिल्ली का ना उर्दू से उर्दू सर्विस प्रोग्राम रिले बेद रिले लाटंग बात

0: सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
3: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेचते।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इटली इक्तसादी रابطوں को वसत देने के लिए भारत मशरिक वस्ता यूरोप माशी राहदारी को मजीद फरोग देने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस साल अमरीका का 250वां योम आजादी भारत में अपने साझेदारों के साथ मनाने के मुंतजर हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और जनूबी कोरिया के आजमदकार फौजियों और हुब गुलवतनी के फरोग से मुतालिक उमूर के वजीर कुमोन ओयोल ने मुश्तरक तौर पर सियोल के इम जिंगक पार्क में भारतीय जंगी यादगार का इफ्तिताह किया है। जम्मू कश्मीर के रियासती इंतखाबी कमीशन ने 2026 की

अनुराधा पोडवाल की आवाज में आप सुन रहे थे साजन फिल्म का नगमा, मौसीकार थी नदीम शरवन। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले को सुननी, फिल्म है शान।

0: इंसानियत है या कितना रियल लिख रहे हैं आप अपने आसपास की दुनिया को। तो हर जबान में लिखने वाला राइटर अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करता है और उसकी अपनी नफ्सियात होती है, जिस तरह के किरदारों से उसका मतलब सबका पड़ता है वो सब है। लेकिन जब हम मैथिली की तरफ नहीं बढ़ते हैं या किसी और जबान की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो शायद देहात के या एकदम कह लें कि जिसको आप एक खास सेंस में उसको भी हिंदुस्तानियत से अगर आपको जोड़कर देखना चाहें तो वो चीजें हमारी जबान में अब तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। हम हिंदी उर्दू की बात करते हैं, बहुत आसपास हैं और एक दूसरे की दुनिया को नहीं जानने का दावा तो कम से कम थोड़ा बहुत उससे परिचय तारुफ तो है हमारा। लेकिन इसके अलावा जो भी दुनिया है, हम बंगाली से भी थोड़ा बहुत हैं कि मतलब तर्जुमे के माध्यम से हमारे यहाँ चीजें पहुंच गई हैं। लेकिन मैंने मैथिली का नाम इसलिए भी लिया खास तौर से कि मैंने जैसे महसूस किया उसको अपनी जबान के तौर पर पढ़ते हुए या चीजों को देखते हुए, तो मुझे लगा कि ये बहुत मतलब कहेंगे रॉ मटेरियल है या बहुत कच्चा मवाद है वहाँ, और उस पर उस तरह का कोई ये नहीं पड़ा है, मतलब ये कह लें कि जैसे कोई थोपी हुई आइडियोलॉजी अभी तक नहीं, उस पर साया नहीं किया है उसने। तो वो जो सोच रहे थे, जिस तरह से देख रहे थे चीजों को, वैसे ही लिख रहे थे।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ मंटो अगर लिखना शुरू भी करते हैं तो वो शुरुआत ही वहां से करते हैं कि रूसी अदब को ट्रांसलेट कर रहे हैं या उस तरह की चीजों से उनका साबका पड़ रहा है, तो एक बड़ी दुनिया अपने साथ लेके चले आते हैं
1: जी।
0: तो बड़ी दुनिया तो मौजूद है उसमें
1: जी,
0: लेकिन ये भी सवाल है कि क्या एकदम वही दुनिया मौजूद है जो हमारे आसपास भी है या जिसको और मतलब अहमियत के साथ होना चाहिए
1: जी।
0: तो मैं ये समझता हूँ।
1: प्रभात रंजन जी, आपका चूंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आप दुनिया की कुछ बेहतरीन किताबों को मैंने देखा कि आपने उनका हिंदी तर्जुमा किया है, आपने कथा साहित्य का भी तर्जुमा किया है हिंदी में और आपने कथेतर का भी अनुवाद किया है, जो आपके पाठक हैं जो आपके अनुवाद पढ़ रहे हैं उनका जो रिस्पॉन्स है कि उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि वो कौन सी विधाएं हैं दूसरी भाषाओं की जिनको लेके कोई खास क्रेज है या कोई खास लोकप्रियता मिल रही है, या जो हर विधा को लेके आप देख रहे हैं कि एक जैसा रिस्पॉन्स है?
0: ये अभी आप प्रयास साहब नए ट्रेंड्स के हवाले से अनुवाद के बारे में बात कर रहे थे, उस पर मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा। देखिए, मैं हिंदी में उर्दू पढ़ता रहा हूँ और मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। मैंने बातचीत में कहा था कि हम लोग जब बहुत बड़े हुए तब हमें यह समझ में आया कि कृष्ण चंद्र हिंदी के नहीं उर्दू के लेखक थे, या राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के लेखक थे हिंदी के नहीं थे, क्योंकि हम उनको हिंदी में पढ़ते हुए बड़े हुए और अफसाने लिखने की शुरुआत या अफसानों के ऊपर जो प्रभाव हमारे ऊपर आए उसमें बहुत बड़ा योगदान इन कथाकारों का भी रहा। मंटो का आपने नाम लिया, मंटो का भी रहा, लेकिन एक नई चीज की ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया को, अनुवाद की दुनिया को, मैं एक तो हिंदी के हवाले से देख रहा हूँ और एक इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं कैसे बन रहा है वो देख रहा हूँ। तो इधर हाल में मैंने देखा, ये शायद खुर्शीद अकरम साहब से बेहतर बताएंगे, लेकिन एक नई चीज मुझे ये समझ में आई कि जो किताबें, सबसे बढ़िया उदाहरण शमसुर रहमान फारूकी के उपन्यास कई चांद थे सरे आसमां का देना चाहूंगा
1: जी, जी, जी, जी।
0: वो किताब उपन्यास उर्दू में भी पेंगुइन ने छापा, हिंदी में भी पेंगुइन ने छापा, हिंदी के पाठकों ने उसको इस तरह से लिया जैसे कोई बहुत नई चीज आ गई हो
1: जी, जी।
0: और हिंदी से भी ज्यादा जब वो किताब अंग्रेजी में अनुवाद होकर गई और बड़े मेयार पे गई, और ये चीज मैंने कई उर्दू वालों से समझने की कोशिश की और बातचीत भी करने की कोशिश की। मैंने कहा कि बहुत बड़ा उपन्यास है, उर्दू के बहुत दीगर आलोचकों ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें उर्दू में लिखी जाती रही है। मुझे ये लगता है जैसे खालिद जावेद के उपन्यासों का भी मैं हवाला दूंगा कि वो ऐसे उपन्यास हैं जो अपने उर्दू की अपनी परंपरा से अलग हैं। वो बाहर के लोगों को, अंग्रेजी वालों को बहुत आकर्षित करती है, हिंदी वालों को बहुत आकर्षित करती है
1: जी।
0: या रहमान अब्बास के उपन्यास रोजिन को लीजिए, ये अंग्रेजी में ज्यादा पसंद की गई, अब हिंदी में आई है तो पसंद की जाएगी, और इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू के उपन्यासों को जगह मिलने लगी है जो बहुत बड़ी बात है। जो उर्दू फिक्शन के साथ जो बीच में लंबे समय तक ये मान लिया गया था कि उर्दू शायरी की जुबान होकर रह गई है, उर्दू फिक्शन ने एक बड़े पैमाने पर उसमें हस्तक्षेप किया है, लेकिन उस हस्तक्षेप का उर्दू दुनिया के अंदर जो असर है मुझे वो उतना बाहर से दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि वो जो प्रभाव है वो बाहर की जुबानों में, और ये अनुवादकों का रोल बहुत बड़ा है इसमें जिन्होंने उसको अंग्रेजी से लेकर हिंदी और उन तमाम जुबानों में ले गया। पहले जो था वो हिंदी उर्दू के लेखक एक जैसे होते थे, मतलब हम, मैंने पहले भी कहा कि कृष्ण चंद्र और बेदी जी का हवाला दिया, लेकिन अब उनमें फर्क दिखने लगा है। उर्दू के लेखक, उर्दू के जो फिक्शन राइटर हैं वो अब अलग लिखने लगे, वो उनकी जमीन एक नहीं रह गई। पहले उर्दू का हर लेखक हिंदी में सबसे पहले आना चाहता था, उर्दू का हर लेखक पहले अंग्रेजी में प्रकाशित होना चाहता है, तो हिंदी केंद्रितता जो थी उर्दू की वो खत्म हो रही है, और ये चीज अच्छी है या बुरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे उर्दू के फिक्शन का बहुत विस्तार।
1: ये जो प्रभात रंजन जी ने बात कही साहब, इसमें इस पूरे डिस्कोर्स में ये बात आती है कि ये जो रिकॉग्निशन मिल रहा है उर्दू और हिंदी के अदीबों को, इसमें कहीं जो अनुवादक है यानी उसकी एक भूमिका है और उस पर बात होती है कि उसका एक बड़ा अहम किरदार है
2: तर्जुमा करने वाले।

0: कई बार खुद फैसला करते हैं और अपने नाफिज भी होते हैं, अपने तरह से चीजों को तरतीब देते हैं, लेकिन कई बार वो आपके खिलाफ जाती हैं।
1: जी,
0: तो शायद एक पेशेवर जो होता है, मतलब अनुवादक होता है, वो चीजों को बहुत बाजार के हिसाब से भी देख रहा होता है, या फिर जो किसी जबान का या भाषा का जो तहजीबी रवैया होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक मतन उठाया और उसको हमने ट्रांसलेट करके पहुंचा दिया।
1: जी,
0: ये मतलब सहाफती तहरीर हो तो ठीक है, वहां तक तो हम कबूल करते हैं उन चीजों को, लेकिन जब आप किसी अदबी मतन के साथ, लिटरेरी टेक्स्ट के साथ मामला कर रहे हैं, तो वहां आपको देखना भी पड़ता है कि किस तहजीब की चीज उठाई गई है। और जहां जैसा अभी खुशी अकरम साहब ने कहा कि जो आपका टारगेट है, मतलब रीडर है या ऑडियंस है, वहां जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं,
1: जी,
0: उनकी जबान का मुहावरा क्या है, उनका लसानी रवैया क्या है, किन बुनियादों पर वो चीजों को देखते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल अभी खाली जावेद साहब की बात हुई तो बातचीत की थी हमने, तो उसी दौरान एक बात आई थी कि एक मामूली सा वर्ड है हमारे लिए उर्दू हिंदी में बहुत कॉमन है, रोटी, लेकिन इसको ट्रांसलेट करते हुए, मतलब खाली जावेद साहब और उनके ट्रांसलेटर के बीच एक घंटों बहस या कई दिनों का डिबेट है, उसके बाद तय किया गया है कि हम इसको कैसे अंग्रेजी के मतलब कारीन तक या ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तो अनुवादक का भी रोल होता है, और उसके साथ साथ अगर वो मतलब राइटर है, लिखने वाला है, जैसे अरुंधति को ट्रांसलेट किया इन्होंने अर्जुमन, तो ये बाकायदा इन्होंने वर्कशॉप की तरह से एक दूसरे के साथ फाइनल मतन को लेके फाइनल किया है कि ये मैंने किया है, फिर अरुंधति कुछ कह रही है कि आप इसको ऐसे कीजिए, तो ऐसे भी चीजें जो है फाइनल होकर तब जाके ऑडियंस के पास।
1: रुबा जी, मेरा जहन एक बात की तरफ रुका हुआ है जो अभी खुर्शीद अकरम साहब ने कहा कि हिंदी से तर्जुमा उर्दू में उतना नहीं हुआ जितना उर्दू का तर्जुमा हिंदी में हुआ, इस बारे में आपके क्या मुशाहिदा है?
2: ये तो बहुत खुर्शीद अकरम साहब की इस बात से मुझे ये ध्यान आया कि जदीद हिंदी का जो पहला सबसे बड़ा अफसाना निगार माना जाता है वो प्रेमचंद है, जो खुद उर्दू से हिंदी में आया।
1: जी, जी, जी,
2: हमारे लिए जो कहानी और उपन्यास की जो जमीन है वो तो उर्दू की जमीन है। आज हिंदी में सबसे बड़ी बहस ये नहीं चल रही है, सबसे बड़ी बहस ये है लिखने की जुबान हिंदुस्तानी होनी चाहिए या तत्सम प्रधान संस्कृत प्रधान हिंदी होनी चाहिए। बहस और तेज हो गई है, यही बहस हमेशा से रही है कि हिंदी में वही लेखक या ज्यादातर ऐसे लेखक बहुत लोकप्रिय हुए, हालांकि सारे लेखक वैसे नहीं लोकप्रिय, जिनकी जुबान हिंदुस्तानी थी, जो तो थी हिंदी थी, वो मिली जुली जुबान के लेखक थे। कमलेश्वर ऐसी जुबान लिखते थे जो बहुत लोकप्रिय थे, हालांकि ऐसा नहीं, निर्मल वर्मा हिंदुस्तानी जुबान नहीं लिखते थे, वो भी बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन जो बड़ा पाठक वर्ग है आज भी वो उस बोलचाल की जुबान में, आप देखिए मैं हिंदी का हूँ, मैंने उर्दू का मुझे दस्तखत नहीं आता, मुझे लिखना और पढ़ना दोनों नहीं आता है, लेकिन मुझे बोलना उस लहजे में मैं बोल सकता हूँ। ये हिंदी को ये बहुत हमेशा से रही है कि उसने उस जुबान को सुना है, और इस बात को अगर आप और ध्यान दें तो आप इस समय देखिए कि उर्दू की जो शायरी है, जो समकालीन शायरी है, जो बहुत ज्यादा अगर मकबूल हो रही है तो उर्दू की वजह से भी हिंदी में मकबूल हो रही है। जॉन एलिया को पता नहीं उर्दू के लोग क्या मानते हैं, लेकिन हम तो उसको दौर का शायद सबसे बड़ा शायर मानते हैं, लेकिन ये हमारा अपना नजरिया है, जाहिर है उर्दू का नहीं है, क्योंकि हमने उसको हिंदी के कल्चर से कनेक्ट हुए हैं।
0: तो जैसे आपने फारूकी साहब का नाम लिया था, कई चांद थे सर आसमां, अब उर्दू वालों की अगर उस नॉवेल के बारे में कोई राय है पहले से, तो वो इसलिए है कि उन्होंने एक खास ट्रेडिशन में अपने फिक्शन को देखा है और वहां तक पहुंचे और उनकी तरबियत वैसे हुई है। अब वो किसी नई जबान में पहुंचकर हो सकता है कि लोगों को हैरान करे, शौक हो जाए कि ये किस तरह की चीज है। खाली जावेद लोगों को बहुत हैरान कर रहे हैं, खुद उर्दू में लोगों को हैरान कर रहे हैं वो। तो अब यही है कि हम जिस ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं उस, तो वहां हमारी चीज कैसे पहुंची है, और उनकी अपनी जबान में जो नॉवेल लिखा गया है या उपन्यास लिखा गया वो कैसे है। तो इसलिए चीजें जो उस पर रिएक्शन है या एक पाठक का कुछ जो मतलब उस तरह पर रद्द अमल है वो अलग अलग तरीके का है, हो सकता है
2: हर चीज नहीं है। एक और बात, खुर्शीद अकरम साहब मौजूद है तो मैं उनके सामने बात रखना चाहता हूँ। उर्दू से हिंदी तो देखिए हमारे बीच में कोई कल्चर का फर्क नहीं है, सिर्फ जुबान का फर्क है। अनुवाद जो होता है वो लिप्यंतरण दोनों तरह से होता है, लिप्यंतरण भी होता है और कई बार अनुवाद भी होता है। और मैंने बतौर पाठक के महसूस किया है जो लिप्यंतरण होता है उसको तो हम लुगत से किसी न किसी तरह समझने की कोशिश करते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन जो अनुवाद होता है वो हमें बड़ा परेशान करता है कि जुबान क्यों बदल दी।
0: जी जी जी,
2: लिप्यंतरण भी अनुवाद का एक हिस्सा है, जो करते हुए उर्दू से हिंदी करते हुए कई बार दफा लोग उसको उस जुबान को बदल देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लोग नहीं समझते।
3: नहीं, मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ, मतलब अभी मैंने हजर जाफरी सैयद साहब का जिक्र किया, उन्होंने बहुत तर्जुमे किए, उन्होंने बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन वो जब हिंदी करते थे उर्दू की कहानी का, तो हिंदी करते थे तो वो लफ्जों को बदल बदल बहुत देते थे, बहुत सी चीज छोड़ भी देते थे। तो मैं राजेंद्र यादव साहब के यहाँ बैठा हुआ था अंश में, तो वो बात करने लगे, इंतजार सेन की इसी कहानी का तर्जुमा करवाया था, तो उन्होंने कहा यार इन्होंने ना किंतु परंतु कर दिया, ये क्या जरूरत है, आपको कोई जरूरत नहीं। मैंने पूछा, मैंने उनको कहा कि सैयद साहब आप सिर्फ लिप्यंतरण कर दीजिए, ये तकरीबन हमारी जबान एक जैसी है। और जैसा भी इन्होंने कहा, देखिए पूरा प्रेमचंद के बाद जो सारा

0: न सिर्फ ये बल्कि पॉपुलर लिटरेचर हमारा, आप गुलशन नंदा और आदिल रशीद इन सब के सब के सब हिंदी में और साइमल्टेनियसली छप जाते थे, है ना। मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब इसी तरह से है कि एक जबान से दूसरी जबान में बिल्कुल कोई दूरी नहीं थी। तो ये ऐसा नहीं, उर्दू हिंदी के खारी जो है वो इस मामले में उर्दू के मामले में हमेशा उसको वेलकम किया और रिसेप्टिव रहे हैं, और इसीलिए उर्दू अदब का हिंदी में ज्यादा तर्जमा भी हुआ है।
1: अभी कुछ देर पहले इनसे बात हो रही थी कि आधी तहरीर अनुवाद है और आधी तहरीर लिप्यांतरण है।
0: ये नहीं होना चाहिए, फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत होती है। अब देखिए जो हमारे यहाँ जो शायरी का मजाज है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने जॉन एलिया का जिक्र किया, जॉन एलिया तो सिंपल उनकी जबान सादा थी, लेकिन और जो हमारे बहुत से शायर हैं उनकी जबान इतनी आसान नहीं है, तो वो उस तरह से और उसको ट्रांसलेट भी नहीं किया जा सकता। अगर आपने अब क्या होता है कि भाई जैसे फयाज कह रहे थे कि भाई आप चलिए उसके लिप्यांतरण कर दीजिए, माने नीचे दे दीजिए, तो लेकिन शायरी में तो ये पॉसिबल है, मुमकिन है, नसर में ये नहीं हो सकता। तो नसर में आपको कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि आप खालिज जबान उर्दू की छोड़ दें या खालिज हिंदी कर दें उसको, बल्कि एक ऐसी जबान जो जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जबान, एक हम लोगों के बीच में देखिए उर्दू और हिंदी के दरमियान में, यानी दोनों के दो अलग इंतहाई किनारे हैं, बीच में एक जबान जो उसको हम कह सकते हैं वो हिंदुस्तानी है, जहां पे दोनों जबानें आकर मिलती हैं, और ये करना ज्यादा मेरे ख्याल में, अगर उसका कोई हमारे पास में कोई बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तब तक के ये एक बेहतर तरीका मुझे लगता है।
2: तो सामिन, आज के इस मुबाहिसे में हमारे साथ थे जनाब खुर्शीद अकरम साहब, जनाब प्रभात रंजन साहब, जनाब फैयाज अहमद वजीद साहब और मैं मालिक अश्तर।
3: सामिन, आज की ये फिक्रंगेज और बामाना नशिस्त अपने खत्म को पहुंची। अंदाज नजर के तहत पेश किए गए इस मुबाहिसे में हिंदी उर्दू तर्जुमे की नई दुनिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर नहायत संजीदा और बसीरत अफरोज गुफ्तगु सुनने को मिली। यकीनन ये नशिस्त न सिर्फ इल्मी एतबार से मुफीद रही बल्कि जबान व अदब के शायकीन के लिए कई नए दरीचे भी खुले। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं तमाम मेहमानान के जिन्होंने आज की इस नशिस्त में हिस्सा लिया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब मालिक अश्तर साहब के उन्होंने नहायत खुश उसलूबी, वकार और सलीके के साथ इस नशिस्त की निजामत फरमाई और पूरी गुफ्तगू को एक खूबसूरत तसलसल अता किया, और इस प्रोग्राम की तरतीब पेशकश इंतजार सैफी साहब की थी। इसी के साथ अपने मेजबान यानी खिसाल मेहदी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
4: दरअसल आकाशवाणी दिल्ली का उर्दू सर्विस प्रोग्राम लंग यानी नितिन मीडियम एफ दोनों एफएम के दिया आकाशवाणी करगिल वास्पोत आकाशवाणी दिल्ली का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर रिले बेत रिले ला डाउन।

सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल

0: फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके। आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश सुसोलिस आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लगा।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहां पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूं ये जानने के लिए

0: आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं. तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं, जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की, या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो. तो वो सिचुएशंस वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए.
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था. यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क बीएसएफ को दिया गया था. और बीएसएफ उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी.
0: Okay.
1: एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है.
0: जी.
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ.
0: जी.
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी. और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में बीएसएफ के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया, और मैं कश्मीर, साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ. हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस. और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा. और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी. और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जैन की असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ. और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की. और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर के सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है. इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े. और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया. और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में. और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
0: बिल्कुल
1: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब इतना बड़ा आतंकवादी और
1: इतना बड़ा
0: जी कि सब
1: कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है
0: जी.
1: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिसपे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड. तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला. बीएसएफ के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था, और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था 27 और 28 अगस्त 2003 को. एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
0: जी.
1: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा. और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया, लेकिन ज्यो ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
0: जी,
1: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा, और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए.

0: वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर है और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने एक जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही। और
1: बिल्कुल
0: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है। और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं कहीं
1: कुछ बड़ा करना
0: है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए। और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी, इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया, अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसको पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है, और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन किया था, और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तुमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था, और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी।
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस

0: सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया है बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदम कद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा।
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा है,
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था
1: बिल्कुल।
0: तो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था,
1: अच्छा।
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती। और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा।
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों।
1: अच्छा।
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो दो ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। तीन ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहां यह था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद उस सेकंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए, बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया,
0: हाथ का,
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर, हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले, सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना रेडियस मेडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई, उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है
1: जी, उस पे कंप्लीट बस्क लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे

0: पैरिटल पार्ट जो कार्डिक एरिया है
1: जी जी,
0: उसमें ना घुस के यस उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हेमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि मुझे दिख रहा था
1: जी,
0: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
1: जी,
0: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
1: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
0: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
1: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी 7 गोलियां शरीर में,
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा क्योंकि हाथ का विजिबल था
1: जी,
0: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
1: जिसने
0: है
1: आपका दिल बचाया।
0: उसमें यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है, फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो जाता है, और फिर
0: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं। बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं
0: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
1: जी,
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
1: जी,
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू, एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
1: जी,
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा था
1: जी।
0: मैंने कहा सर फॉर व्हाट, बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना, सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया, सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उसे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी,
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो जाता है
1: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
0: ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेस,
1: बिल्कुल। और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो नमूने पेश करता।
0: 9 years वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज़ ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस सारी मर्क किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जेएनके असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001
1: बिल्कुल।

0: पार्लियामेंट अटैक कितना बड़ा,
1: 2001
0: बिल्कुल,
1: तो उसने तो अटैक की पराकाष्ठा पे था इंतहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
0: जी,
1: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
0: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवाद
1: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
0: जी,
1: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है, तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
0: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर, यहाँ पर
1: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
0: बिल्कुल
1: देश का सब मस्तक ऊंचा हुआ
0: बिल्कुल, और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
1: मैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ, क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है
0: बिल्कुल,
1: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर इसको, टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के
0: बिल्कुल,
1: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम,
0: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर,
1: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
0: जी,
1: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
0: जी,
1: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
0: डगमगाए जी,
1: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा
0: बिल्कुल,
1: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
0: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार,
1: बटालियन का हेड था
0: जी, मेरे आप लीड कर रहे थे,
1: लीड कर रहा था, मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
0: लेकिन आप फ्रंट पर रहे,
1: खुद के रहने से
0: जी
1: मोराल बड़ा अप होता है
0: बिल्कुल,
1: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
0: मौत के मुंह में घुस गया
1: और घुसे वो
0: बिल्कुल,
1: गाजीबाव के माद में घुसना कोई सिंपल,
0: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
1: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं,
0: मिलता नहीं,
1: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते
0: बिल्कुल,
1: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
0: दुबे सर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको, ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम, वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है, दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
1: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
0: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से, सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स,
1: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज़ वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बांडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी स्काडर्स, हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन, एंड दुबे सर को आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से,
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
0: अच्छा।
1: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी जी बैजो,
1: हाँ
0: अच्छा जी,
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
0: जी,
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है
0: वो आपकी यादगार,
1: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी, हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: फिल्म
0: अनबिलीवेबल,
1: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है
0: और
1: एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
0: है। सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है,
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता,
1: वहां
0: जान जाएगी या जान ली जाएगी,
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
0: या मरने का,
1: तीसरा कुछ नहीं होता,
0: तीसरा कुछ नहीं, या तो
1: दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी

0: में आते हैं या आप
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं।
0: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
1: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है जी। क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफी ज्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं, प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही है। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बीके दत्त है।
1: जी
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पौश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूं कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।
1: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहां पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता ही लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है, लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं,
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा,
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य
1: के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी,
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था बिकम फादर, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है,
0: पहले है,
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस का हम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए मैं एक, अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए।
1: अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और 1 साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फॉरवर्ड के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की

0: कहानियां वो चारपाई पर बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
1: जी,
0: एक्सेप्ट की

0: सर्कल्ड गांव में रहकर नहीं कर सकते थे, और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल, तो आपके खून में नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है बीएसएफ में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: बीएसएफ में एंट्री के लिए तीन लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल।
1: जी,
0: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है।
1: ठीक है,
0: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाई मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल, इंटरव्यू। ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
1: बिल्कुल,
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
1: बिल्कुल,
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
1: जी।
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए क्रिएट हुई
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में सरकारी,
1: तो 25 साल जो सर आपने बीएसएफ में दिए
0: उसके अलावा ये 9 वर्ष एनआईए में,
1: अच्छा
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा
0: मेरे दिल से लगा हुआ है, मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा।
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
1: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, एफएम रेनबो की ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल,
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
1: जी।
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजडी हुई थी देश में
1: जी, जी, जी,
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी। सर, एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है।

0: आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप, नरेंद्रनाथ सर। आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है। नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
1: बस आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप तो जज्बाती हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
0: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे। हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
1: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं। तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज हो।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जिस शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अस्सलाम वालेकुम। यले प्रोग्राम साबखनन नतंग खते लद्दाख रियुल ग्रांयुल पजु यरांग मोजिन नतंग दी रियुल ग्रांयुल पानला दुचि मोलबजत की गचुक जर्मोरिक नतंग योंग दुचुंगती दी इलाका ननो बख्शिस
2: हाय नती करगिल ले रिजन अनु वक्षे अनु टीबी नतपो मन कॉमन युत्सुक मगर ट्यूबर क्लोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम इताद दक्ष जर्मो तकरीबन मत खान सुखशिसो फिर भी यंग शक्ल में वक्तन फोक्तन दोसुस मरीज ले बेजना जुना ससुब न तुत पा अति आता ना पे वक्स न फल्ला तंग से मन गुंदे सुख पा ते ससुब न तुत पे दुखचस पुस बसे हिस्सों चना खोखशा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दीजर मो मन दरांग काफी मत इधर लुस दुकों ले और जक बजक इकोनॉमिक स्टेटस पे इम्प्रूव सों से नंग उन किचन उन हाइजीनिक सों से अति एग्रीकल्चर लैंड का ससुप तुत्पा एक्सपोजर कम छे हिसाब का दिजर मोन इनशाला कम छिन छिन मगर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त

0: सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि विन नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month. Additional Secretary in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal said, they are continuously coordinating with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed the commitment to cooperate on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the conferment of Food and Agriculture Organization, FAO, Agricola Medal to Prime Minister Narendra Modi in Rome, Mr. Chauhan said that this honor is a symbol of the growing prestige of New India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India's GDP upgraded from 6.4 to 6.5% in the middle of global crisis, demonstrating the capability of 1.4 billion Indians.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: फायुली वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी भारतीय मीमांग सुन्न यम्बो ग्रक्चा इन खुरी सिंह स्पेरन योमी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात स्त्रोलिका आकाशवाणी स्टेशन गंगमास दी प्रोग्राम पो यम्बो नशिर बचाइन दो मन मा दूरदर्शनी यूट्यूब चैनल दोना प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर का दी प्रोग्राम पो नशिर बचाइन इर्दू जगपजत योमी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम दोन एफ एम के आकाशवाणी करगिलिन वास्पोत सोत्रुग नंबर 84 कसता स्तोत्रखरिक प्रचुगत नियन मसत

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो उसमें आपको जब भी ऐसा कुछ ब्रेस्ट में या एक सिंगल ब्रेस्ट में या किसी किसी को दोनों में भी अगर ब्रेस्ट में ऐसे अगर लंप हो या मांस हो या अगर ऐसा कुछ है तो आपको शक होता है तो आपको आपके डॉक्टर्स के पास इलाज कराना है, उसके पास पहले चेकअप कराना है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है कि जब भी आपके ब्रेस्ट में एक ये बन जाती है, मांस एक बन जाती है या इसको हम एक गिल्कियाँ बोलते हैं वो बन जाती है, तो ये एक अलामत होता है। और साथ में क्या होता है कि बहुत टाइम से एक ब्रेस्ट में एक अल्सर जैसे ना कोई जैसे रेश होता है हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई जख्म जैसा कोई बन जाता है, वो बहुत टाइम से हील नहीं हो जाता है ब्रेस्ट में। तो किसी किसी को क्या होता है कि वो निप्पल जो होता है ना, निप्पल से कभी कभार जैसे क्लियर डिस्चार्ज या ब्लड इसमें से डिस्चार्ज आने लगता है बहुत टाइम से। चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट में जो लम्ब बनते हैं, या हमारे अगर जुबान में बोला जाए तो कोई जैसे कि आपके पिपिया में निक छाने का तो ए स्क्रांसन छिक छाने का तो, या दो टाइम खचिक लुस दो बड़े छेंसों छाना दो बस यारी कोई स्किन पैरा में कोई पक्षपा हो चंदे गेंद को ब्रेस पक्षपा हो अगर का दो एरा इन्वॉल्व हो से दो अगर का तो मारपोस हो से या इंफ्लेमेशन जैसे नो आते दो सो से दो स्क्रॉन से कतु का टाइम काफी सफल लुस लगा तो, या देखा नहीं रहा निपल पिगा नहीं रहा ए डिस्चार्ज होने का देना खराब से सोची या कलियर के जब सब छी होने का तो दो बहुत टाइम से दो लुस लगा तो यार डॉक्टर ने कहा तो अलामत छी नहीं रहा ब्रेस्ट कैंसर ही। तो ब्रेस्ट कैंसर यार घना लोग इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि किसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है किसको नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने बताया पहले तो एक रिस्क फैक्टर क्या होता है कि इसमें एक तो एज मैटर करता है ना, एज जैसे फीमेल्स में 50+ में ज़्यादा कॉमन होता है, एक एज फैक्टर इंक्रीजिंग एज जैसे आपका एज बढ़ता जाता है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस, जैसे
1: उम्र के हिसाब से चेंज हो सकता है,
0: उम्र के हिसाब से एक रिस्क फैक्टर रहता है आपका। और इसमें दूसरा रिस्क फैक्टर होता है जैसे ओबेसिटी हो गया, जैसे कि मतलब वजन ज़्यादा हो गया, किसी को वेट ज़्यादा है, वेट पर कंट्रोल नहीं है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है कि जिसका ब्रेस्ट फीडिंग कभी किया नहीं हो किसी, चाहे जिसका जिसने कभी शादी नहीं किया हो या कोई बच्चा नहीं हो उसमें कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया हो, तो उसमें थोड़ा चांसेस ज़्यादा रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के।
1: फिर अभी भी मतलब से इतना माला
0: हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग कभी नहीं किया हो तो यही ब्रेस्ट फीडिंग का एक फ़ायदा है कि ये तो कैंसर से बचाता है। तो ये एक तीन रिस्क फैक्टर्स हो गया। चौथा हो गया जैसे कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते आप लोग, कोई रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी आपका नहीं है, और डाइट अच्छे से आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो। और तीसरी बात यह है कि इसमें जैसे रेडिएशन एक्सपोजर गई हो, किसी को कोई ब्रेस्ट को कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, एक्सरेस हो गया या कोई दूसरा टाइप का रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो उसमें चांसेस बढ़ता है। तो हाँ, और दूसरा चीज़ होता है और भी रिस्क फैक्टर्स इसमें है जैसे कि हार्मोनल थेरेपी, कोई पेशेंट अगर किसी चीज़ के लिए या एक उम्र होता है जैसे कि 45 या 50 ईयर्स के बाद एक पोस्ट मेनोपॉजल हम बोलते हैं, इसमें आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसके बाद हार्मोनल थेरेपी कुछ लेते हैं तो उसके भी हार्मोनल थेरेपी के भी रिस्क होता है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो और कुछ हार्मोनल थेरेपी जो बोलते हैं वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो फीमेल्स में ये रिस्क
1: उम्र
0: हो जाते हैं।
1: हिसाब
0: और
1: से
0: साथ
1: तो
0: में
1: कुछ
0: जो
1: चेंज
0: ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनमें भी यही कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। हाँ
1: देना
0: हाँ बिल्कुल,
1: बाज़
0: ये यानी ये रिस्क फैक्टर्स भी हैं। साथ में हम कॉजेस भी इसके बोल सकते हैं, जैसे रेडिएशन हो गया, यूज़ ऑफ जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया जैसे शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं, तो वो भी इसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं, गुस्सा मेल में और फीमेल दोनों में। और एक चीज़ है जैसे आपका रेडिएशन एक्सपोजर का हमने बोला, एक मोस्ट कॉमन चीज़ होता है जेनेटिक, एक इसमें होता है जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री अगर हो, फैमिली में अगर किसी का ऑलरेडी किसी का ब्रेस्ट कैंसर एक दो नफर को हुआ है पहले, किसी जैसे दादी को नानी को या किसी फीमेल को या उसकी कोई पार्टनर को, जो उसे कोई लेडीज है उसकी अगर कोई सिस्टर है उसको अगर कैंसर हुआ फैमिली में, तो उसमें थोड़ा जेनेटिक हिस्ट्री में क्या रहता है उसमें भी कुछ 15% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क रहता है। तो एक जेनेटिक फैक्टर होता है क्योंकि एक जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। हाँ ये चीज़, हाँ ये चीज़ इसमें मैटर करता है। तो ये चीज़ें रिस्क फैक्टर से उसके कॉजेज ये ब्रेस्ट कैंसर के।
1: बख्शी सर इस तीन खनुल्ला फेसबुक पर से मोल्स की दी ब्रेस्ट कैंसर को गजुबा चचा सेन या उम्र हिसाब ना चचा सेना या रंजो से अगर उतना चचा सो से उतना देखना चचा सेन जेरे या दी तखसनान गजुबा चचा सेन चजर बना मता तखसन से वक्स पे जो तुक्स

0: shmun nga ta ki mu thongin chana ta tasma chama mit ki di jashmu ga chukshin jere chana sa di breast cancer pe kana chachas poga chuga chachas in yaris mul di gana nga ta strung looks ba sega chuga dukchas in ya di elash poga chukshin chas in
1: acha maine iske jaise aapko causes bataye iske baad risk factors jo jo hota hai isme kya hota hai prevention mein bhi yahi hota hai प्रिवेंशन में जितने भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उसको आपने ध्यान में रखना है जैसे कि अभी तो एक जेनेटिक जो फैक्टर एक बताया एक रिस्क फैक्टर जिसमें चांसेस होता है कि आपके कैंसर होने के सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जेनेटिक फैक्टर जिसको है रिस्क है उनको पहले बताना चाहिए कि कुछ एज जैसे 40 साल का हो गया इसके बाद उनको एक ब्रेस्ट का एक स्क्रीनिंग करना चाहिए सबसे बड़ी बात होती है जैसे अपना खुद एक सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हर कोई लेडीज जो अगर इनको जैसे खासकर जेनेटिक फैक्टर इसकी फैमिली में अगर रिस्क हो तो उनको खुद 40 साल के बाद खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करके सेल्फ पल्पेशन जो बोलते हैं खुद देखना है ब्रेस्ट में कोई मांस या कोई गिल्टियाँ या कोई भी अगर कोई जख्म हो जाता है या कोई अल्सर या कोई निपल से डिस्चार्ज होता है वो अपने हर महीने के बाद या जब भी रूटीन काम है आपने ये पल्पेट करके एग्जामिन खुद करना है देखना है और जब भी कोई ऐसा अलामत हो तो आपने अपने डॉक्टर्स को ये इन्फॉर्म करना है तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो जांच हो जाएगा और साथ में दूसरा चीज़ है इसको बचने के लिए खासकर एक तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग आपने करना है तो आपके चांसेस कम हो जाता है तीसरी बात यह कि आप रेडिएशन कोई एक्सपोजर है उससे आपको अवॉइड करना है रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं लेना है लाइफ में तीसरी बात यह हो गया आपको डाइट एक बैलेंस डाइट लेना है एक रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी आपको रहना चाहिए और हार्मोनल थेरेपी है वो भी कोशिश करना चाहिए नहीं लें अगर जब तक अननेसेसरी या बाकी और भी आपके रिस्क फैक्टर्स है जैसे स्मोकिंग हो गया वो अल्कोहल कंजप्शन हो गया ये चीज़ें जो शराब हो गया सिगरेट हो गया ये तंबाकू इनका आपने सेवन या इनका कंजप्शन आपने नहीं करना है तो यही चीज़ें हैं आपको जो आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचाएगा और ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सेल्फ एग्जामिनेशन करना खुद अपने ब्रेस्ट का तो उसमें आपको जब भी कोई थोड़ा सा शक हो जाए ये ऐसी चीजें अगर अलामत आ जाए तो आपने डॉक्टर के पास चेकअप कराना है तो आप जैसे डॉक्टर के पास चेकअप कराओगे तो आपका डॉक्टर जो है वो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन जो होता है जो कुछ टेस्ट होता है सीरीज आपको टेस्ट कर देंगे सबसे पहले तो डॉक्टर उसका एक फिजिकल एक एग्जामिनेशन पल्पेशन करके देखेंगे क्या ब्रेस्ट का वो लंप कैसा है मास कैसा है उसमें डिस्चार्ज कैसा है तो ब्रेस्ट में वो एग्जामिनेशन करेंगे पहले आपको जो हेल्थ प्रोफेशनल है डॉक्टर है इसके बाद अगर उसको उसमें लगे कोई शक हो तो उसके बाद उसका ब्रेस्ट का एक अल्ट्रासाउंड होता है उसमें पता चलता है कि ये कोई इसमें एब्सेस तो नहीं है या कोई सिस्ट तो नहीं है या ब्रेस्ट कैंसर ही है इसके बाद एक मैमोग्राफी होता है एक ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है अलग से उसको बोलते हैं मैमोग्राफी तो मैमोग्राफी में भी आपको पता चलता है कि कैंसर की अलामत है इसमें है या नहीं ये दो तीन हो गया इसके बाद अगर लगे तो उसमें एक फाइन नीडल एस्पिरेशन ये बायोप्सी एक होता है साइटोलॉजी बोलते हैं इसको उसमें एक सीरीज लगा के उसमें से जहाँ मांस होता है जो गिल्टियाँ बनाता है वहाँ से थोड़ा सा वो कंटेंट लेके उसको माइक्रोस्कोप के जरिए आपके जो पैथोलॉजिस्ट है वो देख लेते हैं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है कैंसर के कोई चेंजेस तो नहीं आया चीज़ें हैं इसके बाद और भी सीरीज होता है जैसे अगर छोटा सा गिल्टी हो तो उसको ऑपरेशन करने के बाद सर्जन जो है जनरल सर्जन ऑपरेशन करने के बाद बायोप्सी के लिए भेज देते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं हम तो उसमें फिर कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है या नहीं है और टाइप कौन सा टाइप का कैंसर है तो कैंसर तो इसके बाद हम अगर कंफर्म हो गया कैंसर है तो फिर बाकी और भी टेस्ट करते हैं जैसे सीटी स्कैन कर लेते हैं चेस्ट का एब्डोमेन का या इसमें हम बोन स्कैन होता है पेट स्कैन होता है इन सब में देखते हैं कि कैंसर कोई आगे पीछे तो नहीं फैला है कौन सा स्टेजिंग है यानी कि पहला स्टेज है दूसरा है तीसरा है चौथा है तो वो उसके हिसाब से स्टेजिंग कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इसका हम ये करेंगे इलाज करेंगे मैनेजमेंट जो इसको बोलते हैं अगर स्टेज वन में होगा छोटा सा अगर होगा आगे फिर पीछे अगर नहीं फैला होगा तो इसमें एक छोटा सा एक ऑपरेशन होता है लंब एक्टोमी करके बोलते हैं इसमें जो लंब बनाए मांस बनाए उसको निकाल के बंद ऑपरेशन कर देते हैं उसके बाद ये ठीक हो जाता है दूसरी बात क्या इसमें हम ममो ये मेस्टेक्टमी हम बोलते हैं इसमें जैसे मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी ऐसे होते हैं इसमें हम ब्रेस्ट को पूरा सर्जरी करके निकाल देते हैं ताकि वो फैल ना जाए बाद में जो ब्रेस्ट का है वो रिकन्स्ट्रक्शन करके नए से ब्रेस्ट इसमें हम इम्प्लांट लगा देते हैं कॉस्मेटिक रीजंस के लिए है या कभी कभार क्या होता है कि अगर ज़्यादा फैला हो तो उसमें कीमोथेरेपी हमें करना पड़ता है सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में रेडिएशन थेरेपी इसमें होता है या सर्जरी से पहले करेंगे या बाद में करेंगे तो इसमें और इम्यूनोथेरेपी इसमें होता है तो इसमें और भी जैसे हार्मोनल थेरेपीज इसमें होता है ये बहुत सारे इसमें अलग अलग

0: इक्विपमेंट्स अब आ गया है, तो वो ज़्यादा एडवांस हो गया है। और ये है कि अगर स्टेज वन स्टेज टू में, अगर पहले अर्ली स्टेजेस में अगर होंगे तो उसमें अगर सर्जरी करने के बाद, थेरेपी के बाद, मतलब मैक्सिमम चीज़ों में ये ठीक हो जाता है, क्यूरेबल हो जाता है और इसको हम कैंसर मुक्त करा सकते हैं। तो बाकी अगर ज़्यादा फैला हुआ तो जैसे स्टेज फोर में हम बोलते हैं, या डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं, जिसमें अगर लंग्स में, आपके ब्रेन में, आपके किसी और जगह पे अगर फैल गया हो, तो उसमें तो चांसेस कम रहते हैं, ये क्यूरेबल उस वक्त नहीं हो जाता है, उसके सर्जरी करने के बाद, थेरेपी के बाद भी उसके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं।
1: अच्छा जी, ब्रेस्ट कैंसर को पीपी तमिल मा दियंग पीपी अंक तो आता दी ब्रेस्ट कैंसर को यदि कैंसर को छा न का तो आती गो सरम फैलाया सचिन पास यानी दियंग लुशस में
0: ये मेटास्टेसिस एक स्टेज होता है, जितने ये एडवांस स्टेज हो जाता है तो उसमें बाकी जगहों पे फैल जाता है,
1: स्टेज के हिसाब से
0: लंग्स में, ब्रेन में, या आपके लीवर में गए फैल जाता है, तो उसके बाद फिर चांसेस सर्जरी करने के बाद, थेरेपी के बाद भी इंसान के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। अगर अर्ली स्टेज में अगर उसको अगर स्क्रीनिंग करके अगर मैनेज करेंगे तो उसमें एक ये हो जाता है। दूसरी बात एक थोड़ा एक
1: तुम लोग बचस इन या अगर सुखी का स्टेज हिसाब से बचस इन छना दिया यदि टाइप्स से सर की जी ब्रेस्ट कैंसर के टाइप हिसाब से छना ब्रेस्ट कैंसर ही लोग से टाइप चुका है मतलब सर
0: ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि को टाइप्स अलग होते हैं, जैसे स्टेजिंग या होते हैं ना स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री फोर सब पर, इसी तरह से हमारे इसमें एक एक टाइप जिसमें होता है, जैसे कि एक ब्रेस्ट कैंसर हम एक बोलते हैं डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यू करके होता है, डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यू हो जाता है, जैसे जो जहाँ से मिल्क ग्लैंड्स होता है ना, मिल्क जो डक्ट्स होता है वहाँ पे कैंसर सेल बनता है उसमें, इसको डक्टल कैंसर इंस्टीट्यू होता है, वो आगे पीछे फैला नहीं होता है। उसके बाद एक होता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में जो कैंसर है वो डक्ट्स जहाँ से मिल्क जहाँ जाता है डक्ट्स बोलते हैं, मिल्क डक्ट्स वहाँ से अराइज होता है, इसके बाद बाकी ब्रेस्ट में फैल जाता है, उसको इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। इसके बाद होता है एक लोबुलर कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा वो होता है आपके जो मिल्क जहाँ ग्लैंड्स है वहाँ पे जहाँ मिल्क बनता है, ब्रेस्ट मिल्क बनता है वहाँ पे भी कैंसर सेल्स वहाँ पे अराइज हो जाता है, इसके बाद वो फैल जाता है, उसको लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट बोलते हैं। बाकी और भी कैंसर के टाइप्स होते हैं, जैसे पेजेस डिजीज होता है ब्रेस्ट कैंसर, या और भी कैंसर्स होता है बाकी इसमें, और जो एक ये मैलिग्नेंट बोलते हैं, मैलिग्नेंट वाला पार्ट बोल रहे हैं, मैलिग्नेंट बोलते कैंसरस, इसमें ब्रेस्ट में और भी कस्म के होते हैं, जैसे बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज होते हैं, बिनाइन मतलब जो नॉन मैलिग्नेंट, जो नॉन कैंसरस, कैंसर के बगैर भी और भी, जैसे ब्रेस्ट में आपके लम्स या आपकी गिल्टियाँ आपकी स्वेलिंग बन जाती है, तो उसमें होता है बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज बोलते हैं। इसमें बिनाइन जो ब्रेस्ट सिस्टिक डिजीज होता है, उसमें सिस्ट टाइप के होता है, इसमें सिस्ट क्या होता है कि इसमें अंदर जो ब्रेस्ट के अंदर है वो पानी जैसे या फ्लूड जैसे सिरस सुसर हम बोलते हैं ना, वो जमा हो जाता है, उसको हम ब्रेस्ट सिस्टिक डिजीज होता है। और एक कॉमन चीज होता है वो ब्रेस्ट एप्सिस होता है, ब्रेस्ट एप्सिस मतलब ब्रेस्ट में पस बन जाता है, जो ज्यादा कॉमन है हमारे ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज है हमारे जो जो बच्चों को हाँ दूध पिलाते हैं, खासकर फ्रुआ ऑर्जन तंगानुल्ला फ्रुआ पीपी तंगानुल्ला दोनला ज्यादा कॉमन इन दो अति यहाँ पे भी बहुत कॉमन या बाकी जगहों पे कॉमन हो गया। उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग कभी कभार थोड़ा आप डिले करते हो या टाइम टाइम पर ब्रेस्ट फीडिंग मंगाना उसमें, या आपके निपल पे कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बच्चा दूध पीते वक्त कभी थोड़ा सा बच्चा कभी दान निकल जाता तो कट जाता है उसमें, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वही इन्फेक्शन धीरे धीरे ब्रेस्ट के अंदर आपके जो ग्लैंड्स में आपके डक्ट्स में पहुंच जाता है, तो वहाँ जो मिल्क बनता है वो उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है उसमें पस जमा जाता है, उसमें भी क्या होता है कि ब्रेस्ट में एक स्वेलिंग और एक जैसे मास जैसा उसमें भी बन जाता है। और कैंसर उसमें अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है कि इसमें आपको ज्यादा पेनफुल होगा ये वाला, एक तो मेरे लिए ब्रेस्ट फीडिंग वालों में होगा, जो भी ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं जो भी आमा चीज को पीपी तंगा तो दोनों सचिन ज्यादा कमन तो दोनों ज्यादा पेनफुल होते हैं, जर्मो खेमो होते हैं, दोनों ज्यादा मरपोस होते, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उसमें बोलता है सिम्टम्स होते हैं, दोनों ज्यादा पेनफुल होते हैं, दोनों बुखार छाचा गोगा छुच्चा उच्चा होचा छक्षा होचा दोनों फोबो का दंगन ब्रेस्ट एप्सिस जैसे एप्सिस में जी जैसे दरन देने पहला एंटीबायोटिक्स दो आसमान मान दाँ से दो साल का कंट्रोल पे कोशिश बचा दो, अगर शुरुआत दिखे उतना का तो एंटीबायोटिक्स का हफ्ते या पांच दिन इस्तेमाल पर जाना कंट्रोल छचा सदी का नाम अच्छा, अगर तो ना पूछो ना का तो डॉक्टर का छचा डॉक्टर जनरल सर्जन जरा कोई भी सर्जन हो दो ब्रेस्ट को एप्सिस को फिंग से नहीं ड्रेसिंग बस्ता बना देगा ना को ठीक छचा, मगर जिस

सांस का कम से कम खर्चा दो हफ्ता तीन हफ्ता चार हफ्ता तक बलू से मतलब धीरे धीरे कौन ठीक चाहिए यार बेस्ट इन्फेक्शन या बाकी जगहों पर अता एप्सिस या अस्नाक सोसे इन्फेक्शन छात्र होता दोनों अति बेस्ट पिका इन्फेक्शन सोसे ही दोनों अस्मा निका दोनों अस्नाक फिर से बेसिंग मानो तो चाह दो मतलब कैंसर चमन यार बाकी किसी किसी में ये हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग बखाने में एक कैंसर यंग टाइप चीज हो जाए दो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर जिन चीज हो जाए ब्रेस्ट

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सत्थानी ऑर्गेनिक्स मनतो जन कश्मीर लदरे माना कंपनी मोमो या दो न को आती यंता राबिता बसाता हूँ सुख माते क्यों को बना या दो न राबिता बसते दना इन न सिप्रे बोस इन्फेक्शन सों सुख लेकिन जी सों ना चलो माना दिस बच्चे यकीनन जिचिक मन खतरा सों सिं जुली चिक बना है ना जन्ना खुर्चास पर यब ना चंडांग में खतरा चीची। दूसरी बात यह कि यब ना जुली मान लीजिए अगर बोखना मोबाइल से खते लुस ना जुली चन्ना साइज व जुली साइज पर दन मक्स पोचे चीन बद कस्मती जो मता सो ज्यादा शिमनी पपड़ी एहतियात पे सब बचे तरह इन ना वार फुटिंग का नमजा व फुट पता ना सो सुना जिस दिन पीपिया ना था इलाश पे ना तेस कोशिश बे कोशिश बचा यानी जिस दिन पे एफिर्स इन नया फरा चीजें जिस दिन पे एफिर्स इन एफिर्स रोल पे अलग होते जिस दिन पे अलग होते रहे छाना अच्छा देखने अलावा आस इन चीज़ देखी बाज़ वक़्त जा टाइम पुखन यहाँ ज़मींदार ला तब ऐसे दें तभी गौर भी सब सुन ता टाइम सुन सी डिपार्टमेंट हार्टिकल चेयर मिसाल ते सोलर लास्ट इन जोश तंग दे कते को सुनते सोलर प्लेट चिक योग पर नो सुनते रा चारा प्लेट चिक मती फर्ची ताक बंद चारा प्लेट चिक प्लास्टिक औरों प्लेट दे दा छुटा सांसंग मत यानी दो गार मल्समा लतंग मन फल्ला दरे यंग स्टेज जगह तेरे बीच में टाइम सोंग सी डेस्टिन पर आते कार्डिंग मोजर पर दो अमूमन कुशी कोई उम्मत दो मैनेजमेंट ने दक्षण ना प्रैक्टिस यंते शुरू बची कि चाहे असली नेते मी जमींदार ला टाइम पर शेषन टाइम मां नोर इंदु पाप को संत में ती दो शेन दो दे सब लास्टे मर्चे मल तांग सब हल्ला दे लास्टे उन्हीं खेरे दोनों अंदर दे लास्टे जक में मल्चा और जमींदार ला पता शा रुशा जिबन पल पता शा रुशा खेरे खेरे ना आल चा मिशकिल चुकिया तांग दोनों में बस बल्कि कोशिश वो दो यान मिसिंग सी मतलब जैसे थागरी ने और पुछाने वाला और पुतोंचा शिपटे क्या हो शिंच जब लाते पहुंचने तब पता दे छाने वाला और पुदुक्स पर दिमाग और पिशियर दोना दे लाते ने बला विषय उनका पन बल्कि इन सोचियो दे देर नो चुतां से हमेशा जैसे चु हमेशा जब मिसबास पॉइंट दूसरा दोना दे और यंग फरजीजे बिल्कुल माना सिंग सिंग माना एक्चुअली कोशिश किलंग का चांग थोंचा में न क्रालबुत हन मोरे बसे क्रालबुत हन मोरे बसे जोस्तोरी बसे माना चुली कुशुन गेन तर शशा बस तुम लेकिन ना अचल मुमकिन है नाजा पे शशी मिसाल तो जक निसबा सो बच छूस पोई में अजा पे शशी लेकिन दोदा शि ग्रोस्टिक बस है क्रलबु ची गो के मिसाल तो ता यन चो दे या बोलते क्रलबु सुम रिमो बस तंग देगना दे क्रलबु ची मंगा यंग फ्रॉम क्रलबु ची गो ची परे ची तंग से डालते डालते पु फाबना लेन मना लेन माफा बि जोस्टिक बस दो बच्चा मैं नाचा दी लास्टेन पर खतरनाक लास्ट में दूध चाहिए टाइम पर सोंग हो जी बाबा काली मोती अपनी मां दन क्या बोलते हैं ब्यामलाप से जन्ना ब्यामलाप से बीइंग में टाइम सोंग सीन यानी जी ब्यामलाप से छानी बॉक्स ला छानी वाला जी ब्यामलाप से उसूर पिन छानी वाला को पिस्ता बीइंग मत पिस्ता बीइंग वाला लगा गा मसाज चकत ओत कत थोना ते ओत पालता से दन लास्टेन ओत पालता से उम्मत दे लास्ट इन ओत पाल छाना मिसाल तो का खा ओत पुथों एक न बलप पे का ने मिसाल तो चिप पर को बलप पे कौन था निस्पा कोई भी आसानी पे चीज चीन बलप मेले मेंगते मेलों से चीन नंगोस पर न बलप ओत पुथों मना को द बलप पालता से मन ओत पालता से छाना कोई पास पा दे का शक पा दे का बंग से बिया मतलब से गता सत पा यद मत बिया मतलब से कतों गता कतों पुरी तरह सत पकतियों नरिया में कुछ आश्चर्य तो मैं चांस इनमें टोटल यहाँ चमें दर्शन दे किन तो चलो 100% ना को मिसाल तो गति ओत पु कति किमिक छाना गता माना यकीनन माना सब लोग से जो ओत पु कति किमिक बना डिपार्टमेंट हार्टिकल चेयर मिसाल तो ननी मोल अगर 1,000 कति उस बजू का तो 10-15,000 की क्यों से इफेक्टिवली सकस का तो तुम बस मतलब ताना ना उम्मीद इंशाल्लाह ताला की बहुत टाइम टाइम चिंग माता में मुझे मिलूं सकता था जी कार्निंग बहुत बहुत हद तक कंट्रोल खत्म भी माता यंचिया छाना जमींदार था मेहरबानी से जी माता जी कार्निंग बहुत भी शितना यंग फरे चिक माता फक्शी छा चुप भी मीना बारा एक करूं उनका जरखर जी हदायत कोशिश बहुत दे अलावा यंग चिंग माता युद्ध मिसाल तोर यूल खचिया मिसाल तोर क्या बोलता है हंडक साका तो माता शीत माता मुकद्दूदना छाने वाला बला पियंते रहना साथ पहना प्रमोर ताज तल से हंडप पिकर या गर्भसुम तल जोस्ते बसे बालाप की प्याल लतांचा या निचाने वाला श्याम बंग जब जिक वना बार यब नमर श्याम या कप्तार प्याल बसे यब ना बालाप और पुतुचा बचा या ने द बाल बालाप श्याम या बाल्टिंग जान लुक या मैंना कलस्टर टिंग जान लुक पच्चते दें लुक छुटा से जक जा निमा सुबह का गाता हूँ देखना गाती मार्शिनन अल्हम्दुलिल्लाह खास अब बहुत मुसा सवा सलास पर मोतुलास ना पहला लास ना सुबह बंग बसा दूं लादे और पुसता है सच्चा यानी निमा और जब जरूरत टोटल लिमिट जी और तेजात पंगता तांचा से तेजात पकतो

kyat paricha na mana nga ta ji biamlap se bohot hatta kata zun mayan chin biamlap katsu kata zun mayan na ata distin po kata manaj ba yan ni jan shacha ya de lawa ta yang chi musipa chi kata khando khachi zwa shuru song set ki ata khas kar ji minji ka natang se takriban nga ta ta lonche sa padang ya dea nuks biarpi stin za khani stin chik आम संसद बा फोजे अलबी वटक जल पर दो यंगस बा मुसीबत तो सो यंग जे तरीका बिल्कुल यंग चोक चोक सीधा खन बेर पिलो मा गे न चप जे नो स नाथिक द मुसीबत पे गले बत या दी वासला दो स्टिन पु स्टिन ब जव से लिमा दन बन चार पों सिन चाना गा दी खुश कब दी गुंदा सो दिया फारो डिपार्टमेंट को रेंजर साहब ने गुंदा स्प्रे सु इचे खोस ननी हालत पलता से डिसिप्लिन दुम खरा बस लो जरे डिसिप्लिन जिचे खोस या ते हदायत पु तकरीबन गस जारी बस बिन की मतेस ऑर्गेनिक्स मन बीटी बिस्ता थारा जन सिजरियंग उस मन ऑर्गेनिक इंदो टोटो लेदो बैक्टीरिया इंदो जरिए का मता ता न मता मने मना स्टिन पु कम बी चांस इन इंशाल्लाह जी को अरदा पु दोने सु की वक्त से का स्टिन पु बिन मसा दुन ला को सिप्रे बस को दे बीटी ब मा गस पब्लिक का खास कर मिंजी का ता से रिस्पोंड या दोन ला पब्लिक का जोश इस बेटी अंता मेहरबानी जैसे कौन कॉपरेट बस कॉपरेट बस सुपरियर दो बस बस बार ना फादर में ना अंता जस्टिन पों दे लोमा जखन जस्टिन पों अंता कंट्रोल बाय इंची दो में ना अंता दो यंग अंता नमसी गोबाल दम में खतर दो ने पिया इंता संबातो अगर दक्षण ना संभव मत करना जू ने नुकसान तो मैं किमोज चीन जा ये ते तस्य यंता एहसास बस अगर लोइस का तो लोइस बसे का तो दरे मिखाची अगला पे बहुत चंग मिशात पर लोमा साथ देखें और लोमा यूं मजरे दे लोमा दोमरा लोमा यूं मत स्पेरा सही स्पेरा ही लेकिन अतं ग्रायू ने अतं सीजन तुम्हारे टुक्टी को दस हजार पर टुक्टू ये चेस पर बस चीचे देना क्या बोलते दिल लोमा ताम सिखाता क्यों लुस पैसा पुल चंबालक सूत्र गोयर पे क्यों मचीन चंबालक सूत्र से न गोयर पुस मिचेस पे क्यों मिचान फल लगा रुगुन ये ग्रांग पुत्यक सेल चंबालक सूत्र कम शमित तादी जब भी मतलब पुतु मिसाल तो लोमा माच्या पता देगा सोमा लोविंग दे सोमा कच्चा लुस पर बसे रुगुनी वक्त आल चंबालक सूत्र भी कपेस्टी कम चान फल लगा और लुइक सुम का तो जब कंचन चान फल लगा यकीन हम नमाज कर सकते हैं यहाँ तेज रंगे नजर बस तो जिस्टिन पु घुमा खुरी का आज से पांच छह साल पहले मिंजी न बुते डेंगू से शुरू छकानी दें तो दें व्यर्थ में काफी कम से होता जा चौदह आर दरे में अफसोस मगर दो चीज की खास कर कन्नर जम्बा से लेकर गता आशी ने सहर पंग मान आज व्यर्थ में यु जफा चाहे को नर्स गैरिन कास पर माते दात में इच मधुक अस मानसी दोन एफेक्ट्स हो तो दोन नमाज कांस पी दें गति छो सरमा गता खत चेक प्रशिक्षण लिहाजा दिन फिर इंतजाम बता या जी गति सरमाया disarmani fe sambat on the timing bola mana timing se pe the timing more in the middle of the ruin and I timing se department amun bas se bas pre pa so ta ba zo qaz mina do ton ju nga gari ma ni ma chin naga chi ki ya ji jaxi naga chu chi shmen ada de ze se pre ma bas pika de se pre ma bas pika ti ya ti yo pika to mana zbiartik sum chi ni shik sam na do yari आज कल व्यापार की कीमत आज के दिन में फल लगा पाँच छः हज़ार छः दो चार माह व्यापार इशू चाहे एक लाख रुपये सूँ यारी यक्षी मजदूरी असाध आठ सौ रुपये सूँ दे तो संबत मजा फ्यूचरिस्टिक दे संबत हम कोशिश बस देखें दरे मैं दंग दिन जमाने से पर दो जरूरी कि आज कल ये ग्लोबल वार्मिंग दुनिया खुरा सख्त एहसास भी नहीं कि जिस बुनियाद पर लोग लोग मतलब क्षमता छेन सों से या स्टीन यो चाहे पिंची मोह सों ना चाहे दो चाहे चीन रहे जिल चमन अफसुस पोस बियारे वक्सदा गता आबादी अस केते लिहाज दे अल्लाह चमन अफसुस नमजे मुमई सपा सुन पो बस लुस पा जरूरी है मैं ना आता ही सोच अस पो खुदा ना करे वक्स ही सोच छ नजर के एनवायरनमेंट दो दिन ने प्रॉब्लम मता छ खतरा छ छ दोने फिया यंते संबत हूं चाना पब्लिक गंगा से फर जी स्टिन सुन के बने यंता तफसीलन जस इंशाल्लाह यंता हाउस दुख दुख या दो महीना दामद्री को यार माना स्टेशन माना मुहम्मद को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एल टेपा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दरें ना माना स्टिंग नाम भी फिर जैसे डिपार्टमेंट सारा कौन कौन नॉलेज को कौन एन बातें जमाने से पे अपडेट बस कौन पता कौन ना तू से राय पिता बचा या दो निफ़िया दे बाज़ अपना सुनता सुनता शोभ लोमा चो शोभ पाँच सौ कौन दे शोभ तो मैं छो मचूद नजरे लेकिन दोन सब बस अमली तो मैदान है यहाँ से लास्ट वहाँ तक जरूरी होता अल्हम्दुलिल्लाह दरे अल्हम्दुलिल्लाह चीचे जनों का तेरा टन पाला खास कर शिली साहब दास को दोनों साथ चीचे कौन चुली गोर चीज रखी करती है ना कौन पूरा जमींदारी हम पूरा गुजारा चें दो या बटाली के साइड पर जहाँ लग पिछा चाना जो अति सरमाए समसे दोनों कोशिश भी कोशिश

दरियांतेजपुर की खबर लाइन यूनिट पिन मीडिया में दोनों एफ एम के दियो आकाशवाणी करगिलिन फायुली वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी भारतीय मीमांग सुन्न यम्बो ग्रकचाइन खुरी सिंह स्पेरन योंगमी आदित्य जगह निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात स्त्रोलिका आकाशवाणी स्टेशन गंगमास दी प्रोग्राम पोग यम्बो नशिर बचाइन दो मिनमा दूरदर्शनी यूट्यूब चैनल दोना प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर का दी प्रोग्राम पो नशिर बचाई ईद उजक पजत योंगमी आदित्य जगह निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: Medium ve ton FM kadio akashvani kargilin vasbot usut ordunna medin shvechinuk kasata akashvani srinagerkana urde khabarna tabsira vridebet rilela

लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

प्लेटफॉर्म प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए IIMC की वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9877।

0: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम स्पेशली, एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, और कोई फ्रूट पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी ना फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें।
1: मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 23.9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:25 और गरूब आफ्ताब शाम 7:31 पर होगा। खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के सरकारी दौरे के बाद पहुंचे वतन वापस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नौजवान पोत की बागतियारी के लिए सरकार और समाजी तंजीमों के दरमियान मजबूत इश्तराक पर जोर। जम्मू कश्मीर के स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का कोई मनसूबा नहीं। महकमे तालीम और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में 2 रोजा कौमी जायजा इजलास इख्तिताम पजीर। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं एजाजा अख्तर। आज 21 मई को पूरे मुल्क में इंसदादे दहशतगर्दी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर मनाया जाता है, जो 1991 में एक दहशतगर्दाना हमले में जान बहक हुए थे। ये दिन हमें न सिर्फ एक अलमनाक कौमी सानहे की याद दिलाता है, बल्कि उस खतरे की भी निशानदेही करता है जो दहशतगर्दी इंसानियत, अमन और जमहूरी इकदार के लिए पैदा करती है। दहशतगर्दी आज एक आलमी चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों की तरह बरसगीर और बिलखसूस कश्मीर भी इसके असरात से मुतासिर रहा है। तशद्दुद और खौफ की फजा ने मुआशरती ढांचे को कमजोर किया, इदारों को नुकसान पहुँचाया और अवामी एतिमाद को मुतासिर किया है। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसान, समाजी हम आहंगी और मईशत को उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी का ना कोई मजहब होता है, ना कौमियत और ना ही कोई इखलाकी जवाब। एक महजब मुआशरे में दहशत, खूनरेजी और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती। तशद्दुद ख्वाह किसी भी फरीक की जानिब से हो, वो तनाजे को मजीद पेचीदा बनाता है और इंसानी, समाजी और इक्तसादी वसाइल को तबाह करता है। हिंदुस्तान एक आईनी जमहूरियत है, जहां सियासी और समाजी मसाइल के हल के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते मौजूद हैं। मसाइल का हल मकालमे, कानून और जमहूरी इदारों के जरिए ही मुमकिन है। यही रास्ता देरपा अमन, इंसाफ और इस्तेहकाम की जमानत बन सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आज जब कौम राजीव गांधी को याद कर रही है, तो ये दिन हम सबको इस अहद की दावत देता है कि नफरत के बजाय रवादारी, तशद्दुद के बजाय मकालमे को फरोग दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ असल कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब इंसानियत, इंसाफ और अमन को इज्तिमाई तरजीह बनाया जाए। तबसरा खत्म हुआ, शब है।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
4: अभी तक आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू खबरें और तबसरा समाप्त कर रहे थे। मीडियम एफ और एफएम पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है।

फौजी भाई जय हिंद। फिल्मी नगमों पर मैं अपने आपका मनपसंद प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर फिर एक बार आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन फयाज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह प्रोग्राम हर शाम 8:30 बजे आपकी खिदमत में ऑल इंडिया रेडियो कारगिल से नशर किया जाता है। प्रोग्राम में हम कुछ मनपसंद फिल्मी नगमे आपको सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ। कुछ अब के अजीब हसरत दीदार है वरना, कुछ अब के अजीब हसरत दीदार है वरना, क्या गुल नहीं देखे कि गुलिस्तान नहीं देखा मेरे।

दोस्तों, ये फिल्म नगमे अब ऑल इंडिया रेडियो कारगिल से फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम मेरे पसंद में सुन रहे हैं। मोहब्बत बेख्तियार होती है, यह तो बिन बादल बारिश की तरह बरसती है। मोहब्बत शबनम के कतरों की तरह है जो दिल की सरजमीन पर गिरती है तो जमीन को सैराब करती है।

दोस्ती प्यार और मोहब्बत इज्जत से आगे बढ़ती है। दोस्ती का डोर इतना कच्चा नहीं कि दुश्मनों की बेरुखी से टूट जाए। चाहत में ताकत है। दोस्ती की कद्र कीमत चाहतों से आगे बढ़ती है। दोस्त एक दूसरे के गम में शामिल होता है, खुशी में शामिल होता है। दोस्त तो परछाइयां भी नहीं छोड़ती, जन्म जन्म में एक दूसरे का साथ होता है। जब एक उदास रहता है तो दूसरे को उसका गम सहना पड़ता है।

दोस्तों, ये फिल्म नगमे आप ऑल इंडिया रेडियो कारगिल से फौजी बाहिन के लिए प्रोग्राम मेरे पसंद में सुन रहे हैं। चिराग राह वफा में जलाए हैं बरसों, ये जुगनू पलकों पे हमने सजाए हैं बरसों। कभी जो देखा परिंदों को गुफ्तगू करते, जमाने प्यार के फिर याद आए हैं बरसों।

बचपन की दोस्ती जब जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो पता नहीं कब और कैसे प्यार के रिश्ते में बदल जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दूरी का तस्वीर भी गिरा नहीं लगता है।

दिल में किसी निगाह की छुरी उतर गई, जैसे कि काटती हुई कल्ब जिगर गई। वल्लाह तेरे हुस्न तसव्वुर के फैज से तुझको ही देखता हूँ जहाँ तक नजर गई।

अभी आप फौजीबाइयों के लिए प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर आकाशवाणी करगिल की आवाज़ से सामीन शब के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ

0: एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
1: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

का साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हम

0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले दो से तीन दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG.

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीराजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की खतरनाक सप्लाई मौजूद है।

تن سامریکا بسن بلبل بیسے تو کی چھریکا

بخمو تبر تبر زندس کنی و دغفون لخمنمو خبرا کوچش نم پلو پر